0: KZSU Stanford.
1: Namaskar, aadab, sat sri akal. Yeh hai KZSU Stanford 90.1 FM. मैं हूँ प्रांजलि और आप सुन रहे हैं चाय टाइम. बहुत बहुत स्वागत है आपका. दोस्तों, जब कोई उम्दा लिखे तो वो मेरी रूह तक पहुँचता है, मेरे दिल में जगह बनाता है. उनके लिखे लफ्ज, कविता, नज्म कागज़ से दिल तक का सफ़र करती है. लेकिन एक ऐसे शख्स हैं, वो जब लिखते हैं या कुछ कहते हैं तो ये सफ़र थोड़ा उल्टा होता है. यानी मुझे लगता है कि उनके लफ्ज मेरे दिल से गुजर कर, मेरी आवाज़ में घुल कर, फिर कागज़ की ज़मीन पर उतरे हैं. मैं जो कहना चाहती थी, जैसे कहना चाहती थी, बस वही वो लिख रहे हैं. तो मेरे लिए मेरी कलम अगर कोई है तो वो है जावेद जी. जी हाँ, हमारे अपने जावेद अख्तर साहब. तो चलिए आज की चाय मीठी करते हैं उनके अल्फाजों से. जुड़े रहिए चाय टाइम से.
2: KZSU Zootopia is our robot curated music service that takes over when our live DJs aren't available. Like a self-driving car, Zootopia operates with no human at the controls. Zootopia now streams epic tracks from thousands of our DJs' most played albums over nearly the past two decades, so you can enjoy the best of college radio KZSU style. Check out our live playlist at kzsu.rocks. Zootopia, truly the Bay Area's coolest college radio on KZSU.
1: बात जावेद साहब की हो तो उनके बारे में उनसे अच्छा कौन लिख सकता है. आज हम उनके लिखे तरकश के वो तीर दिल पे लेंगे जो नुकीले तो नहीं मुलायम से हैं, लेकिन भेदते जरूर हैं आपका सीना. तरकश, जावेद जी की आप बीती. वो कहते हैं, लोग जब अपने बारे में लिखते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं कि वो किस शहर के रहने वाले हैं. मैं किस शहर को अपना शहर कहूँ. पैदा होने का जुर्म ग्वालियर में किया लेकिन होश संभाला लखनऊ में. पैदा होने का जुर्म ग्वालियर में किया लेकिन होश संभाला लखनऊ में. पहली बार होश खोया अलीगढ़ में. फिर भोपाल में रहकर कुछ होशियार हुआ लेकिन बम्बई आकर काफ़ी दिनों तक होश ठिकाने रहे. तो आइए ऐसा करते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी का छोटा सा फ्लैशबैक बना लेता हूँ. इस तरह आपका काम यानी पढ़ना भी आसान हो जाएगा और मेरा काम भी यानी लिखना. शहर बम्बई, किरदार फिल्म इंडस्ट्री, दोस्त दुश्मन और मैं. 4 अक्टूबर 1964, मैं बम्बई सेंट्रल स्टेशन पर उतरा हूँ. अब इस अदालत में मेरी ज़िंदगी का फैसला होना है. बम्बई आने के 6 दिन बाद बाप का घर छोड़ना पड़ता है. जेब में 27 नए पैसे हैं. मैं खुश हूँ कि ज़िंदगी में कभी 28 नए पैसे भी जेब में आ गए तो मैं फ़ायदे में रहूँगा और दुनिया घाटे में. माफ़ कीजिए जावेद जी, दुनिया घाटे में बिल्कुल नहीं रही. आपने 28 नए पैसों से कहीं ज़्यादा पाया. बेशकीमती प्यार कमाया हमारा, लेकिन फिर भी इस सौदे में फ़ायदा दुनिया का रहा. आपके लिखे डायलॉग्स ने, नज़मों, गीतों, गज़लों ने हमें जो दिया, उससे हिंदी का, उर्दू का, इस दुनिया का सिर्फ फ़ायदा ही हुआ है. शुक्रिया कि आपने हार नहीं मानी, चलते रहे. तो चलिए हम शुरू करते हैं चाय का ये सफ़र. बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार. कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो. मिट जावे जो टकरावे, चले चलो. भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो.

तो साथियों आज हम सुनेंगे जावेद जी के लिखे फिल्मी गीत और साथ ही उनके लिखी कुछ नज़में, कुछ गज़लें, कुछ कविताएं। वैसी एक है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चलचलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और अपने झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है चलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है, दबीस और खासा भारी, कुछ ज़रा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाज़ा के जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफ़त के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी, वो एक गुस्ताख मुफ्फट आईना जो दिल का अच्छा था, वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तस्बीह करती थी, वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था, दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट और दरीचे पर झुकी वो बेल कोई सब्ज सरगोशी, किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी थकन का चारागर वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था, छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियाँ थीं, वो छोटी मेज़ पर और सामने दीवार पर आवेज़ा तस्वीरें मुझे अपनायत से और यकीन से देखती थीं, मुस्कुराती थीं, उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊँगा, मैं एक दिन यूं भी जाऊँगा कि फिर वापस ना आऊँगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था।

दीप्ति नवल और फारूक शेख की फिल्म साथ साथ, बहुत ही अच्छे गाने और इसी फिल्म में एक और बेहद ही खूबसूरत गाना है, मेरे पसंदीदा गानों की फहरिस्त में शायद सबसे ऊपर। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, बस इस धूप में एक दोस्त, एक दरख्त, एक छांव। मेरी जिंदगी की धूप में जो घना साया है मेरे लिए, उस साये के लिए अगला गाना, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया।

कितना अच्छा लिखते हैं जावेद साहब, गाने या कविता ही नहीं, उनके स्क्रिप्ट, उनके डायलॉग्स सब कुछ उम्दा होते हैं। मुझे उनकी हर चीज़ पसंद है, पर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद है। पहली तो है उनकी खूबसूरत नाक, खुदा ने ऐसी नाक दी है कि ऊंची तो होनी ही थी। दूसरी चीज़ जिसकी मैं कायल हूँ वो है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। साथियों, मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने माजी के स्ट्रगल को, बचपन की कड़वाहट या जिंदगी के संघर्ष को कभी आड़े नहीं आने देते, उसकी वजह से बिटर नहीं होते, पर स्ट्रगल के बाद मिली सक्सेस को मुस्कुरा कर एक्सेप्ट करते हैं। तर्कश में जावेद जी कहते हैं, बम्बई में 2 बरस होने को आए, न रहने का ठिकाना है न खाने का, यूं तो एक छोटी सी फिल्म में 100 रुपये महीने पर डायलॉग लिख चुका हूँ। कहीं कभी असिस्टेंट हो जाता हूँ, कभी एक हाथ छोटा मोटा काम मिल जाता है, अक्सर वो भी नहीं मिलता। दादर एक प्रोड्यूसर के ऑफिस अपने पैसे मांगने आया हूँ, जिसने मुझसे अपनी पिक्चर के कॉमेडी सीन लिखवाए थे। ये सीन उस मशहूर राइटर के नाम से ही फिल्म में आएंगे जो ये फिल्म लिख रहा है। ऑफिस बंद है, वापस बांद्रा जाना है जो काफ़ी दूर है। पैसे बस इतने हैं कि या तो बस का टिकट ले लूँ या कुछ खा लूँ, मगर फिर पैदल वापस जाना पड़ेगा। चने खरीद कर जेब में भरता हूँ और पैदल सफ़र शुरू करता हूँ। कोहिनूर मिल्स के गेट के सामने से गुजरते हुए सोचता हूँ कि शायद सब बदल जाए, लेकिन ये गेट तो रहेगा। एक दिन इसी के सामने से अपनी कार में गुजरूंगा। एक फिल्म में डायलॉग लिखने का काम मिला है। कुछ सीन लिखकर डायरेक्टर के घर जाता हूँ, वो बैठा नाश्ते में अनानास खा रहा है, सीन लेकर पढ़ता है और सारे कागज मेरे मुंह पर फेंक देता है और फिल्म से निकालते हुए मुझे बताता है कि मैं जिंदगी में कभी राइटर नहीं बन सकता। तपती धूप में एक सड़क पर चलते हुए मैं अपनी आंख के कोने में आया एक आंसू पोंछता हूँ और सोचता हूँ, मैं एक दिन इस डायरेक्टर को दिखाऊंगा कि मैं। फिर जाने क्यों ख्याल आता है कि क्या ये डायरेक्टर नाश्ते में रोज अनानास खाता होगा। अनानास, पता नहीं जावेद जी डायरेक्टर अनानास खाता था या नहीं, पर झूठ जरूर बोलता था। आप राइटर नहीं बन सकते, बन गए और ऐसे बने कि बस चाहे कोई अमिताभ को पसंद करे या शाहरुख का फैन हो, अगले गाने में उसे सुनाई देंगे सिर्फ जावेद साहब। मैं हूँ डॉन।

अगली रचना जावेद जी की, उलझन। करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, ये रास्ते हैं कि भीड़ के छत्ते, जमीन जिस्मों से ढक गई है, कदम तो क्या तिल भी धरने की अब जगह नहीं है। ये देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अब जहाँ हूँ वहीं सिमट के खड़ा रहूँ मैं, मगर करूँ क्या कि जानता हूँ कि रुक गया तो जो भीड़ पीछे से आ रही है वो मुझको पैरों तले कुचल देगी, पीस देगी। तो अब जो चलता हूँ मैं तो खुद मेरे अपने पैरों में आ रहा है, किसी का सीना, किसी का बाजू, किसी का चेहरा। चलूं तो औरों पे जुल्म ढाऊं, रुकूं तो औरों के जुल्म झेलूं। ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुनसिफी पर, जरा सुनूं तो कि आज क्या तेरा फैसला है।

आप सब जानते ही हैं जावेद अख्तर का असली नाम जादू है। उनके पिताजी की कविता थी लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, यहीं से उनका नाम पड़ा था जादू। चूंकि जावेद नाम जादू से मिलता जुलता था इसलिए उनका नाम जावेद कर दिया गया। वो जादू से जावेद तो बन गए लेकिन शब्दों की जादूगरी नहीं छोड़ी उन्होंने। उनकी लिखी अगली रचना मेरा आंगन मेरा पेड़। मेरा आंगन कितना कुशादा कितना बड़ा था जिसमें मेरे सारे खेल समा जाते थे, और आंगन के आगे था वह पेड़, और आंगन के आगे था वह पेड़ कि जो मुझसे काफ़ी ऊंचा था, लेकिन मुझको इसका यकीन था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा इस पेड़ की फुनगी भी छू लूंगा। बरसों बाद मैं घर लौटा हूं, देख रहा हूं ये आंगन कितना छोटा है, पेड़ मगर पहले से भी थोड़ा ऊंचा है। स्क्रिप्ट लिखते थे साहब, डायलॉग्स भी, लेकिन थे तो शायर, कैसे छुपा पाते अपना हुनर। कस्तूरी की महक हो ही जाती है दुनिया को। यश चोपड़ा साहब ने फिल्म सिलसिला के लिए जावेद जी से गाने लिखने कहा और उफ क्या ख्वाब के बस के खुशगवार सिलसिला बन गया। फूल भी हो दरमया तो फासले हुए, लेकिन लफ्जों ने जावेद जी के और हमारे बीच के सारे फासले दूर कर दिए। आलम यह है कि कहीं भी ट्यूलिप्स नजर आए बस बैकग्राउंड में एक ही आवाज गूंजती है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।

माशूका पे हर कोई लिखता है, दिल से लिखता है, खूबसूरती से लिखता है, पर किसी लड़की को देखकर क्या लगता है, ये इतने प्यारे लफ्जों में सिर्फ जावेद जी ही बयां कर सकते हैं। 1942 लव स्टोरी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

तो साथियों ये है KZSU स्टैनफर्ड 90.1 FM, मैं हूँ प्रांजलि और आप सुन रहे हैं चाय टाइम। और चाय टाइम पर हम सुन रहे हैं जावेद अख्तर की लिखी तरकश के कुछ बेहतरीन हिस्से। तो तरकश में अगर कोई मेरे दिल के करीब कविता है सबसे ज्यादा तो वो है हिजर। हिजर का मतलब होता है विरह, सेपरेशन फ्रॉम द बिलेवेड। कोई शेर कहूँ या दुनिया के किसी मौजू पर मैं कोई नया मजमून पढ़ूँ या कोई अनोखी बात सुनूँ। कोई शेर कहूँ या दुनिया के किसी मौजू पर मैं कोई नया मजमून पढ़ूँ या कोई अनोखी बात सुनूँ। कोई बात जो हंसने वाली हो, कोई फिक्रा जो दिलचस्प लगे, या कोई ख्याल अछूता सा, या कहीं मिले कोई मंजर जो हैरान कर दे, कोई लम्हा जो दिल को छू जाए। मैं अपने जहन के गोशों में इन सब को संभाल के रखता हूँ और सोचता हूँ जब मिलोगे तुमको सुनाऊंगा। वैसे ही फिल्म जोधा अकबर का एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, जावेद अख्तर का लिखा, जावेद अली का गाया, कहने को जश्न बहारा।

तरकश से अगली रचना दुश्वारी। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहां तो दिल का ये आलम है कि क्या कहूं, कमबख्त भुला न पाया ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। इसी कड़ी में मेरे लिए शाहरुख और जावेद जी का जो फेवरेट कॉम्बिनेशन है वो सुनते हैं हम, कभी अलविदा ना कहना से कहें धड़कने दिल की।

जावेद जी अपने स्ट्रगल की कहानी आगे बताते हैं। मैं अब साल भर से कमाल स्टूडियो में रहता हूँ। स्टूडियो के इस कमरे में चारों तरफ दीवारों से लगी बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं जिनमें फिल्म पाकिजा के दर्जनों कॉस्ट्यूम्स रखे हैं। मीना कुमारी कमाल साहब से अलग हो गई है इसलिए इन दिनों फिल्म की शूटिंग बंद है। एक दिन मैं एक अलमारी का खाना खोलता हूँ। इसमें फिल्म के इस्तेमाल होने वाले पुरानी तरह के जूते चप्पल और सैंडल भरे हैं और उन्हीं में मीना कुमारी के 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी पड़े हैं। मैं उन्हें झाड़ पोछ कर अलग रख देता हूँ। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी फिल्म अवार्ड को छुआ है। रोज रात को कमरा अंदर से बंद करके वो ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ जब ये ट्रॉफी मुझे मिलेगी तो तालियों से गूंजते हुए हॉल में बैठे हुए लोगों की तरफ देखकर मैं किस तरह मुस्कुराऊंगा और कैसे हाथ मिलाऊंगा। जावेद जी, क्या उस समय आपने सोचा था कि इतनी सारी ढेरों ट्रॉफियां तो आपके प्रशंसकों का इतना प्यार आपको मिलेगा? साथियों, इसीलिए हमेशा सपने देखने चाहिए और अपने सपनों के पूरे होने की जिद भी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि जावेद जी कहते हैं, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो।

माँ नहीं रही, पिताजी ने साथ नहीं दिया और जिंदगी संघर्षों से भरी रही। लेकिन फिर सफलता ऐसी मिली कि बस मिलती ही चली गई। पर आगे जावेद जी लिखते हैं, आज यूं तो जिंदगी मुझ पर हर तरह से मेहरबान है, मगर बचपन का वो एक दिन 18 जनवरी 1953 अब भी याद आता है। जगह लखनऊ, मेरे नाना का घर, रोती हुई मेरी खाला, मेरे छोटे भाई सलमान को जिसकी उम्र 6.5 बरस है, और मुझे हाथ पकड़ के घर के उस कमरे में ले जाती है जहां फर्श पर बहुत सी औरतें बैठी हैं। तख्त पर सफ़ेद कफन में लेटी मेरी माँ का चेहरा खुला है, सिरहाने बैठी मेरी बूढ़ी नानी थकी थकी सी हौले हौले रो रही है, दो औरतें उन्हें संभाल रही हैं। मेरी खाला हम दोनों बच्चों को उस तख्त के पास ले जाती है और कहती है, अपनी माँ को आखिरी बार देख लो, मैं कल ही 8 बरस का हुआ था, समझदार हूँ, जानता हूँ मौत क्या होती है। मैं अपनी माँ के चेहरे को बहुत गौर से देखता हूँ कि अच्छी तरह याद हो जाए। मेरी खाला कह रही है, इनसे वादा करो कि तुम जिंदगी में कुछ बनोगे, इनसे वादा करो कि तुम जिंदगी में कुछ करोगे। मैं कुछ कह नहीं पाता, बस देखता रहता हूँ, और फिर कोई औरत मेरी माँ के चेहरे पर कफन उड़ा देती है। शुक्रिया जावेद जी, आप हारे नहीं, आप लिखते रहे, लिखते गए, आपके लिए, हमारे लिए, और यूं ही चलते गए।

तो साथियों, घड़ी का इशारा हो गया है और जाते जाते बस आपके लिए एक छोटी सी रचना और एक और गाना। जैसा कि आप जानते हैं, आज के चाय टाइम में हम सुन रहे थे जावेद अख्तर की किताब तरकश के कुछ हिस्से और साथ ही उनकी फिल्मों के गाने। अगली गजल है जिसका शीर्षक है गजल। बहाना ढूंढते रहते हैं कोई रोने का, बहाना ढूंढते रहते हैं कोई रोने का, हमें ये शौक है क्या आस्तीन भिगोने का। अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफ़ी, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफ़ी, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का। जो फसल ख्वाब की तैयार है तो ये जानो, जो फसल ख्वाब की तैयार है तो ये जानो कि वक्त आ गया फिर दर्द कोई बोने का। ये जिंदगी भी अजब कारोबार है कि मुझे, ये जिंदगी भी अजब कारोबार है कि मुझे, खुशी है पाने की कोई न रंज खोने का। है पाश पाश मगर फिर भी मुस्कुराता है, है पाश पाश मगर फिर भी मुस्कुराता है, वो चेहरा जैसे हो टूटे हुए खिलौने का। तरकश में आखिरी लाइन्स हैं। ऐसा तो नहीं कि मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये ख्याल आता है कि जितना कर सकता हूँ उसका तो एक चौथाई भी अब तक नहीं किया, और इस ख्याल की दी हुई बेचैनी जाती नहीं। जावेद जी, यहाँ हम थोड़े से स्वार्थी होंगे और यही कहेंगे कि बस आपकी बेचैनी कभी न जाए और बस आप ऐसा ही लिखते रहें, ऐसा ही सुनाते रहें, चाहे किताबों में हो, चाहे फिल्मों में, चाहे संसद में या टीवी के पर्दे पर, बस आपकी कलम और आपके लिखे लफ्ज हमारे लिए यूं ही ता उम्र बरसते रहे। तो चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही KZSU के सुनने वालों को मैं यहाँ अलविदा कहती हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले रविवार। आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे, इसी दुआ के साथ मैं प्रांजलि आपसे बाय कहती हूँ। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगली बार। जाते जाते आपके लिए फिल्म तलाश से अगला गाना जी ले जरा।